0: chair a cabinet meeting at the Prime Minister's office, Seva Teerth, today.
1: Elected Prime Minister, एक चुने हुए प्रधानमंत्री सबसे लंबा कार्यकाल तक इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में काम करना ये एक ऐतिहासिक पल है और ये मामूली नहीं है. 4,399 डेज प्रधानमंत्री जी का पूरा हो जाएगा और इस कार्यकाल में जो काम हुए हैं हमारे देश के लिए मैं मानता हूं कि हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनवरत रूप से प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए 12 साल का कालखंड पूरा हो रहा है और वो निर्वाचित देश की आज़ादी के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक कालखंड तक काम करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उनका ऐतिहासिक रिकॉर्ड आज दर्ज हो गया है. और ये 12 सालों का जो कालखंड है वो एक कर्मयोगी का, एक तपस्वी का और अनवरत रूप से साधना करते हुए एक साधक का कालखंड है.
3: देखिए 12 साल तो हो गए हैं तो एक नया रिकॉर्ड तो मोदी जी ने प्रस्थापित किया है, वो अपनी जगह है. लेकिन आज देश की क्या हालत है उस पर भी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा. अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, विदेश नीति किस तरह से तहस नहस हो गई है, मोदी जी ने जो चुनाव के पहले वादे किए थे उसमें से कितने वादे पूरे हुए, क्या उसके बारे में मोदी जी ने कुछ अफसोस जाहिर किया है या कोई माफ़ी का इजहार किया है. 15 लाख रुपए काला धन, 2 करोड़ नौकरियां हर साल, किसानों की आमदनी दुगनी करना.
4: आज के दिवस पे प्रधानमंत्री जी भारतवर्ष के सबसे लंबे प्रजातंत्र प्रणाली से चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो चुके हैं तो अभूतपूर्व स्थिरता और उसी के साथ भारत के घरेलू उत्पादन की दर 7.7% तक पहुंचकर पिछले 12 वर्षों में इसका एवरेज 7% के करीब आ चुका है जिसके आधार पर अभूतपूर्व परिवर्तन भी हुआ है.
5: ये भारत के लिए बहुत ही गर्व का विषय है. देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबसे अधिक समय तक स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में और सबसे बेहतरीन काम करने का कार्य किया है. पूरे देश को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर गर्व है और उनके नेतृत्व में विकसित भारत बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा, गरीब आदमी अमीर आदमी बनेगा और जो जीवन के तमाम सारे संकट होते हैं उन संकटों का समाधान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और होगा.
0: Well, NDTV's managing editor Shiv Varur has exclusively spoken to Union Minister Ashwini Vaishnav on this. Let's also listen in to what he had to say.
6: The occasion of Prime Minister Narendra Modi completing 12 years gives us the opportunity to dwell on an area that is going to dominate the next few years but also be the driving force of India's growth for the foreseeable future. Obviously, I'm talking about AI, I'm talking about tech, I'm talking about semiconductors, those very exciting fields. And there is one man that is fronting this all-important charge here in India, and that is Minister Ashwini Vaishnav. Welcome, sir, and thank you for your time on something that everybody is talking about and everybody is interested in right now. I know you're extremely busy with all the different responsibilities that you have, but I want to ask you right at the start, at this time, about semicon, about semiconductors, because this is, in my personal view, one of the most exciting things that you have. You're doing a lot of exciting things, but this one has far-reaching consequences for India's growth story. Where are we? What is semicon 2.0? And what are we going to achieve, sir?
7: Absolutely, you are right. Semiconductor industry is so important for our country. And especially in the current geopolitical scenario, India has emerged as a trusted partner. In that framework, India coming out as a country which designs semiconductor chips, manufactures them, and comes out as a trusted partner is very, very important. That's why Prime Minister put his focus on

0: मानता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनवरत रूप से प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए 12 साल का कालखंड पूरा हो रहा है और वो निर्वाचित देश की आज़ादी के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक कालखंड तक काम करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उनका ऐतिहासिक रिकॉर्ड आज दर्ज हो गया है। और ये 12 सालों का जो कालखंड है वो एक कर्मयोगी का, एक तपस्वी का और अनवरत रूप से साधना करते हुए एक साधक का कालखंड है।
2: देखिए 12 साल तो हो गए हैं, तो एक नया रिकॉर्ड तो मोदी जी ने प्रस्थापित किया है, वो अपनी जगह है। लेकिन आज देश की क्या हालत है उस पर भी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, विदेश नीति किस तरह से तहस नहस हो गई है, मोदी जी ने जो चुनाव के पहले वादे किए थे उसमें से कितने वादे पूरे हुए, क्या उसके बारे में मोदी जी ने कुछ अफसोस जाहिर किया है या कोई माफ़ी का इजहार किया है। 15 लाख रुपए काला धन, 2 करोड़ नौकरियां हर साल, किसानों की आमदनी दुगनी करना।
3: आज के दिवस पे प्रधानमंत्री जी भारतवर्ष के सबसे लंबे प्रजातंत्र प्रणाली से चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो चुके हैं, तो अभूतपूर्व स्थिरता और उसी के साथ भारत के घरेलू उत्पादन की दर 7.7% तक पहुंचकर पिछले 12 वर्षों में इसका एवरेज 7% के करीब आ चुका है, जिसके आधार अभूतपूर्व परिवर्तन भी हुआ है।
4: ये भारत के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबसे अधिक समय तक स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में और सबसे बेहतरीन काम करने का कार्य किया है। पूरे देश को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर गर्व है और उनके नेतृत्व में विकसित भारत बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा, गरीब आदमी अमीर आदमी बनेगा और जो जीवन के तमाम सारे संकट होते हैं उन संकटों का समाधान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और होगा।
5: Meanwhile, in an exclusive interview with NDTV, Union Minister Ashwini Vaishnav explains India's landmark progress in semiconductor manufacturing. Describing semiconductors as a strategic industry in today's geopolitical arena and environment, Ashwini Vaishnav told NDTV that India has emerged as a trusted global partner in chip design and manufacturing, stressing that India achieved a major breakthrough during Narendra Modi's tenure as Prime Minister. Listen in to what he told my colleague Shivarur.
6: The occasion of Prime Minister Narendra Modi completing 12 years gives us the opportunity to dwell on an area that is going to dominate the next few years, but also be the driving force of India's growth for the foreseeable future. Obviously, I'm talking about AI, I'm talking about tech, I'm talking about semiconductors, those very exciting fields. And there is one man that is fronting this all-important charge here in India, and that is Minister Ashwini Vaishnav. Welcome, sir, and thank you for your time on something that everybody is talking about and everybody is interested in right now. I know you're extremely busy with all the different responsibilities that you have, but I want to ask you right at the start, at this time, about semicon, about semiconductors, because this is, in my personal view, one of the most exciting things that you have. You're doing a lot of exciting things, but this one has far-reaching consequences for India's growth story. Where are we? What is Semicon 2.0? And what are we going to achieve, sir?
7: Absolutely, you are right. Semiconductor industry is so important for our country. And especially in the current geopolitical scenario, India has emerged as a trusted partner. In that framework, India coming out as a country which designs semiconductor chips, manufactures them, and comes out as a trusted partner is very, very important. That's why Prime Minister put his focus on having this new industry. This is something that our country was trying since 1962. Yeah. Prime Minister Nehru tried, Prime Minister Indira Gandhi tried, Prime Minister Rajiv Gandhi tried, Prime Minister Dr. Manmohan Singh tried. Finally, we got

0: poorer households back towards traditional cooking fuels. And Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has also attacked the center over inflation, employment and economic management, calling them the government's biggest failures. The BJP, though, has hit back strongly, with Piyush Goyal describing the last 12 years as a defining period in India's history, saying the Modi government transformed India from a fragile five economy into the world's fastest growing major economy. We've got reactions lined up for you this morning that you need to listen to from Akhilesh Yadav, Sanjay Raut and Hussain Dalwai. Listen in.
1: Khitab to unhein bahut milenge. Agar mere saath abhi petrol pump pe chalo aap, to shayad azadi ke baad इतना महंगा डीजल पेट्रोल कभी नहीं बिका होगा और लोगों ने आपदा में आविष्कार किया है कि सिलेंडर को चूल्हा बना लिया ये भी शायद आजादी के बाद पहली बार हुआ होगा और जिस रसोई गैस के सिलेंडर का इतना प्रचार किया गया सुना है सरकार वो भरवा ही नहीं पा रही है और अगर इथेनॉल न मिलाया जाए डीजल पेट्रोल में इथेनॉल न मिलाया जाए तो जाने कितनी कीमत होगी पेट्रोल की
2: देखिए लंबा कार्यकाल उससे कोई देश को फायदा हुआ है क्या पंडित नेहरू से ज्यादा मैंने एक दिन प्रधानमंत्री कुर्सी गर्म की उससे क्या होता है पंडित नेहरू ने देश के लिए जो कार्य किया कोई तो देश आज है ना आपने क्या किया 12 साल में नेहरू जी ने जो जो किया है वो आज देश देख रहा है आप 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले सके नेहरू ने इस देश के लिए जो कुर्बानियां दी है जो त्याग किया है अपनी संपत्ति भी दान की सब कुछ किया नेहरू जी
3: अरे प्राइम मिनिस्टर वो रहे 12 साल अच्छी बात है किए क्या इस देश की इबरत ही खत्म की अमेरिका के इशारे पे चले यहाँ के यूथ को नौकरी नहीं दे सके बेकारी बढ़ गई गरीबी बढ़ गई अमीरों के कुछ लोगों को सब कुछ दिया जनता का पैसा उल्टा के दिया
0: Well, switching tracks now to West Bengal, the battle inside the Trinamool Congress has come down to one number, and that number is 20. The rebel camp claims it has the backing of 20 MPs, enough for the political split. Team Mamata, on the other hand, is daring them to prove it. Both camps are locked in a high-stakes fight over numbers, over legitimacy and control of the TMC's future. But as the rebels actually push for a separate identity and signal alignment with the NDA, Mamata Banerjee seems to be scrambling to contain the rebellion so far. And amid mounting troubles, she met Congress MP Sonia Gandhi for the second time yesterday. So do the rebels really have the numbers as far as the TMC is concerned? Well, take a look at how the war of words played out.
4: Have in their mind that how they won, because of which ideology they won. Now if they are shifting, if they are leaving or changing, then it is equivalent to cheating the trust people had in them. Whatever it is, for gains, if party is being switched, it is not for long term. Long term for India is the India bloc. The opposition is going to emerge very powerful, and the reflection of the youth frustration is evident. People are very upset with BJP. So all these are going to be the game changing situation in 2029.
5: Darpok log hain, kayar log hain. लोकतंत्र को लुटेरे लोगों ने देश के अंदर लोकतंत्र को लूटने का और रौंदने का काम कर दिया डरा करके धमका करके पार्टियां तोड़ी जा रही हैं देखिए लड़ाई सीधी है और राहुल गांधी के अलावा किसी के अंदर वो दम नहीं है जो देश के अंदर इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ सके
6: मैडम सोनिया से मुलाकात करने गई मैडम सोनिया गांधी एक उस कद की एक महिला है क्षमाशील दयाशील सहनशील सहानुभूतिशील तुम से गला मिलने गए गला मिले इसमें हर्जा क्या है अरे जिस परिवार राजीव गांधी के हत्यारों को पति अपना क्षमा दिखाए जिस परिवार के

0: We could start the commercial production in two plants just in 4 years.
1: And a third one, I hear.
0: Third one will be in July.
1: Yeah.
0: Fourth one will be by December. Mm. So these chips, which are now manufactured in India, it's something which was a dream for the entire country.
1: Yeah.
0: So this is now successfully available. Yes, we have a long way to go.
1: Yeah.
0: And our Prime Minister has always told us three things. First, get the ecosystem right.
1: Yeah.
0: Second, think 20 years. Third, create a talent pipeline. And we have been working on all the three.
2: Meanwhile, senior BJP leader and Union Minister Kiran Rijiju discusses the key differences between the leadership approaches of Narendra Modi and Jawaharlal Nehru. In fact, Kiran Rijiju argues that while earlier governments focused on five-year plans, Prime Minister Narendra Modi introduced a long-term national vision through the Viksit Bharat 2047 mission. Listen in.
1: आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के दोनों के कार्यकाल में आप प्रधानमंत्री जी सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सर करने वाले प्रधानमंत्री हो गए. दोनों के कार्यकाल में बेसिक अंतर, मूलभूत अंतर क्या देखते हैं?
3: बहुत अंतर है. जब देश को आज़ादी प्राप्त हुई उस समय फाइव ईयर प्लानिंग करके देश के लिए काम करना शुरू किया. जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने से लेकर के आगे जितने भी कांग्रेस और बाकी जितने भी सरकारें आए हैं, गैर सरकारी कांग्रेस भी आए हैं, उसमें फाइव ईयर प्लानिंग को तवज्जो दिया गया था. और फिर देश अपना आप गति जो है जैसे भी हो चलते रहा. लक्ष्य नहीं था, टारगेट नहीं था, ऑब्जेक्टिव नहीं था. जब आप कहीं भी जाता है जर्नी में भी तो लक्ष्य तो होना पड़ेगा, डेस्टिनेशन होना पड़ेगा. तो मोदी जी ने जो 2014 के बाद,
1: लेकिन योजना आयोग बना तो योजना आयोग तो लक्ष्य ही बनाता था ना?
3: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. वो 5 साल का होता है. 5 ईयर प्लानिंग ही हमारा सिस्टम था. तो मोदी जी ने उसको बदलते हुए 2047 में विकसित भारत बनना है उन्होंने टारगेट लक्ष्य रखा. तो आप सोचिए कि इतने सालों तक भारत गरीब क्यों बना रहा. हमारे साथ में काफ़ी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं सबने आज़ादी प्राप्त किया और सब आगे बढ़ा. कई राष्ट्र बिल्कुल वो अपने ओर से संपन्न कह सकते हैं या विकसित बन सक बोल सकते विकसित राष्ट्र बने. तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम की दृष्टि से भी ओवरऑल जीडीपी जो है विकसित राष्ट्र नहीं बन पाया क्योंकि लक्ष्य नहीं था.
1: आप ये कह रहे हैं कि 5 साल की सरकार होती थी, 5 साल की योजना बना ली जाती थी, उसके बाद अगला देखेंगे. ये चिंता नहीं थी कि 20 साल बाद देश कहाँ होना है.
3: लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं, किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए. मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखा. हर काम मोदी जी का, चाहे वो जनधन हो, चाहे वो जल जीवन मिशन का हो, चाहे डिजिटल इंडिया का कैंपेन हो, चाहे फिट इंडिया खेलो इंडिया हो, हर चीज़ जितना भी सरकारी कार्यक्रम जो जन अभियान चलाया वो विकसित भारत बनाने के लिए ही चलाया गया है. तो हमारा लक्ष्य है कि जब भारत 100 साल पूरा करेगा आज़ादी का तो विकसित राष्ट्र बन जाएगा. तो अगर टारगेट उस समय रखते हैं नेहरू जी के ज़माने में या कांग्रेस के ज़माने में, तो जब टारगेट रखता था आदमी उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं. तो विज़न, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एक्चुअल जो विज़न है, सपना है, वो न्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है. मैं उनके साथ शुरू से काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे मालूम है कितना लगन और कितना अच्छा सोच के साथ मोदी जी ये लक्ष्य रखा है और हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं.
2: Well, every government wants to be judged by its intentions and history tends to judge governments by their outcomes. As Narendra Modi completes 12 years at the helm, the government is showcasing what it sees as transformational chapter in India's story. The numbers are substantial, as we briefly covered. 3 consecutive terms as Prime Minister, more than 4,400 days in office, and a political journey that stretches from Gandhinagar to New Delhi, and has made Narendra Modi one of the longest serving leaders in independent India's history. But as you know, for any serious democracy, anniversaries are not merely about celebration. They are also moments of assessment. So when future generations look back at this period, what will define it most? Take a look at this report.
4: At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
5: Prime Minister Narendra Modi is creating history. On June 10, he becomes the longest-serving democratically elected prime minister in India's history in terms of uninterrupted tenure.

0: meeting just a while, just a few days back only. TVK also allotted the first Rajya Sabha MP to Congress Party. Praveen Chakravarti got nominated on behalf of Congress Party and is likely to be MP also very shortly. So this is a very crucial meeting in a way, and also Niti Aayog meeting tomorrow. Vijay to participate in Niti Aayog meeting and also to meet other leaders also.
1: Libya. Right, of course, the last time around, the 27th of May, his first visit ever since he took charge as the Chief Minister, he met with Prime Minister Modi, he met with Nirmala Sitharaman, and this time around, he's expected to meet with Amit Shah as well as President Draupadi Murmu and the top command of the Congress Party. Vijay, we will keep tracking that visit of the Chief Minister of Tamil Nadu. He's going to be here in Delhi for a three-day visit till the 12th of this month. Now, Tamil Nadu gets its first for the women by the women police force in the name of, this is the task force, but a political row has erupted over songs from the Chief Minister Vijay's movie that's been played at that very event. The DMK has raised the matter and taken a pot shot at the Chief Minister, calling it a self-promotion. The Chief Minister has launched a specialized all-women police unit exclusively for ensuring the safety, the security, as well as the protection of women and children as well. The DMK has slammed the Chief Minister and accused him of using an official program for his personal promotion. The opposition alleges that the police resources and taxpayers' money is being used to build an image for the actor turned politician.
2: பெண்களுக்கு எதிரான இந்த கொடுமைகள்ல நமக்கு எப்பவுமே ஜீரோ டாலரன்ஸ் தான், அதுல ரொம்ப உறுதியா இருக்கிறோம். சோ சொன்னது எல்லாமே செய்யணும். அதனாலதான் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே இந்த குறைஞ்ச நாட்களுக்குள்ளேயே இதை நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பெண்கள், பெண் குழந்தைகள் எல்லாருமே பாதுகாப்பா தன்னம்பிக்கையோடு இருக்கணும். அதுக்கான முதல் கட்டம் தான் இந்த ஸ்டெப். பெண்களை பத்தின சில செய்திகள்லாம் கேட்கும் போது உண்மையிலேயே மனசு பதறுது, கண்ணு கலங்குது, அதை கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல.
1: Now, in a shocking turn of events, the nomination paper of Congress candidate Meenakshi Natarajan for the Rajya Sabha election in Madhya Pradesh has been rejected. Natarajan is accused of allegedly concealing information regarding a pending criminal case in Hyderabad's court within her nomination form. Now, in the late night drama that unfolded, the Congress has reached the Election Commission's office to file a complaint regarding the rejection of her nomination. The Congress candidate, Meenakshi Natarajan, in a press conference said that this is an attempt by the BJP for seat chori. The BJP, meanwhile, has alleged that because the norms were flouted, nomination was rejected. This is a major blow to the Congress party as elections are scheduled for three Rajya Sabha seats in the state of Madhya Pradesh. While the BJP has announced three candidates, Meenakshi Natarajan was considered likely to win based on the party's current MLA strength.
3: सदस्य संख्या पूरी नहीं होते हुए भी एक तीसरा प्रत्याशी सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, वहीं से शुरुआत हो गई और हमें ये समझ में आने लगा कि ये किस तरह से संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की राजनीति, लोकतंत्र को प्ले करने की राजनीति कर रही है। एसआईआर के बहाने और अलग अलग हथकंडे अपनाकर वोट चोरी तक जो मामला सीमित था, आज वो सीट चोरी एसआईआर के बाद ही शुरू हो गई और अब ये क्लियरली यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव को भी, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में पिछले समय में कोऑपरेटिव के चुनाव और अन्य चुनावों को किया है, वैसा ही बनाने की कोशिश हो रही है।
4: कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा जान करके जो जानकारी छिपाई गई थी, ये एक तरह से आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाने का पाप है। असली में अगर आप पे कोई आपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में हो तो ये शपथ पत्र के साथ लिख के देना चाहिए, ताकि बाद में जब आप प्रत्याशी बनते हो तो उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों की जानकारी प्रत्येक मतदाता तक हो। तो ये इसका मतलब है कि जान करके आपने निर्वाचन अधिकारी को भ्रम में रखा था, और ऐसे में अब कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि अपने प्रत्याशियों के ऐसे आपराधिक अगर रिकॉर्ड है तो वो क्यों करके सामने नहीं लाते।
5: देश के लोकतंत्र और संविधान का जो कत्ल बीजेपी ने करा है, पीठ पे खंजर और गोली मारने का काम करा है कि एक संविधान के मुताबिक चुनाव होता तो बीजेपी को डर था।

0: कि बीजेपी में बड़ी फूट होती, इनके आधे विधायक इनके खिलाफ वोट करते, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से अति पिछड़े और महिलाओं के अपमान करने की कोशिश करी, एक महिला जो दारी वंदना की बात ये करते थे, उस महिला को, गांधीवादी विचारक को, और वो जो अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों की आवाज थी, उनको रोकने के लिए बड़ी साजिश कॉन्स्पिरेसी करके रोका जा रहा है। हम कोर्ट जाएंगे, सड़कों पे लड़ेंगे, संविधान के साथ बात करेंगे।
1: मैक्सी नटराजन जी का राज्यसभा का जो नामांकन था एज अ कांग्रेस कैंडिडेट निरस्त कर दिया गया है। मैंने तो पेपर जांच किए हैं, ये अब केस वोट चोरी का नहीं है, ये अब केस है सीट चोरी का, खुलेआम प्रजातंत्र के साथ डाका हुआ है।
2: निश्चित रूप से जिस तरह से पूरे एफिडेविट का मुझे सामने आया है, और इसमें तेलंगाना के एक बड़े मामले की जानकारी छुपाई गई थी, और छुपाने के साथ साथ में उस पर जो उनको वारंट तामील हुआ था और उसके बाद में उन्होंने अपनी जवाब दिया था, ये सारे ही तथ्य उन्होंने एफिडेविट में छुपाए थे, और जो भी हमारे पक्ष के वकील थे उन्होंने इस पूरे मामले को ढंग से रखा, और निश्चित रूप से अपने आप में जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं उसके आधार पर अपने आप में यहाँ के जो हमारे चुनाव आयोग उसने फैसला किया।
3: आज राज्यसभा के नामांकन जो भरे गए उनकी स्क्रूटनी थी, जांच में कांग्रेस की जो प्रत्याशी थी मीनाक्षी नटराजन, उन्होंने उनके ऊपर आपराधिक प्रवृत्ति का जो केस था उसको छुपाया और जानबूझ करके छुपाया, तो इसलिए संविधान में उन व्यवस्थाओं के तहत जो कमी पाई गई उसके आधार पर जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने उनके फॉर्म को
4: कांग्रेस के लिए परिवाद है वो FIR नहीं,
3: ये तो क्लियर है, आपने आपके ऊपर आपराधिक प्रकरण था वो जानकारी आपको देनी थी, आपने नहीं।
5: देखिए जो तमाम प्रकार के उच्चतम न्यायालय के निर्णय थे, जो भारत निर्वाचन आयोग की हैंडबुक में रूल्स बने हुए हैं, दिए हुए हैं, लिखे हुए हैं, और जो इन्होंने गलती की है छिपाने की, चीज़ें ना बताने की, मिसगाइड करने की, और वो हम लोगों ने तथ्यपूर्वक बातें सामने रखी, उसको स्वीकार किया गया और उनका आवेदन
4: कांग्रेस के लिए लोकतंत्र की हत्या, आप लोगों के पास नंबर्स नहीं थे इसलिए सब किया गया है।
5: देखिए कागज झूठ बोलता है क्या, उनका नामांकन फॉर्म सबके सामने है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम प्रकार के जजमेंट, एक नहीं अलग अलग प्रकार के जजमेंट सबके सामने हैं, भारत निर्वाचन आयोग की हैंडबुक आप ECI की वेबसाइट से निकाल सकते हैं, जब सब चीज़ें सबके सामने हैं तो इसमें क्या बचा है।
6: Well, let's talk about the killer apathy in Hyderabad. Two people, including an auto rickshaw driver and a 15-year-old student, both of these people have died in Hyderabad after they've been electrocuted due to the heavy rainfall that took place on Tuesday evening. What began as relentless rainfall ended in a horrific loss of lives on the city's waterlogged streets. The police say that the victims came in contact with a live electric wire that had fallen on this waterlogged road. The city experienced widespread rain leading to several waterlogging as well as a traffic congestion, traffic jams that were being reported from Hyderabad. Trees had been uprooted in several areas, and all this happened yesterday with the monsoon that in fact had a huge impact in various parts of Hyderabad but also resulted in this very tragic loss of two people. And let's just switch tracks now to West Bengal. The battle inside the Trinamool Congress has come down to that one single number. That number is 20. The rebel camp claims that it has the backing of 20 MPs, enough for that split. Now, the team, as far as Mamata Banerjee is concerned, on the other hand, is daring them to, basically prove those claims, those numbers. Both camps are locked in this high-stakes fight over numbers, legitimacy, and also the control of TMC's future. As the rebels push for a separate identity and signal, as far as the alignment with the NDA is concerned, Mamata Banerjee is scrambling to contain the rebellion. Amid all this, there's mounting trouble as far as Mamata Banerjee is concerned. She met with Congress MP Sonia Gandhi for the very second time, this meeting that took place in Delhi yesterday. So do the rebels really have the numbers is a question really that needs to be answered. And here's how the war of words has played out so far.
7: Have in their mind that how they won, because of which ideology they won. Now if they are shifting, if they are leaving or changing, then it is equivalent to cheating the trust people had in them. whatever it is for gains, if party is being switched, it is not for long term.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला।

0: सर्वाधिक सेवा के अवसर देशवासियों को दिया। हम महाप्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं कि श्री मोदी जी को दीर्घायु दे और लंबे समय तक देश को सेवा करने का अवसर दे।
1: हमारा देश के लिए ये गौरव का पल है कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में 12 साल भी कंप्लीट हो गया है और लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, एक चुने हुए प्रधानमंत्री सबसे लंबा कार्यकाल तक इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में काम करना, ये एक ऐतिहासिक पल है और ये मामूली नहीं है। 4,399 डेज प्रधानमंत्री जी का पूरा हो जाएगा और इस कार्यकाल में जो काम हुए हैं हमारे देश के लिए, मैं मानता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।
2: आज के दिवस पे प्रधानमंत्री जी भारतवर्ष के सबसे लंबे प्रजातंत्र प्रणाली से चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो चुके हैं, तो अभूतपूर्व स्थिरता और उसी के साथ भारत के घरेलू उत्पादन की दर 7.7% तक पहुंचकर पिछले 12 वर्षों में इसका एवरेज 7% के करीब आ चुका है, जिसके आधार पर अभूतपूर्व परिवर्तन भी हुआ है।
3: भारत के लिए बहुत ही गर्व का विषय है, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबसे अधिक समय तक स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में और सबसे बेहतरीन काम करने का कार्य किया है। पूरे देश को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर गर्व है और उनके नेतृत्व में विकसित भारत बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा, गरीब आदमी अमीर आदमी बनेगा और जो जीवन के तमाम सारे संकट होते हैं उन संकटों का समाधान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और होगा।
4: Now, India has been trying to break into the semiconductor space for the last many years, 1962. Since then, India has been trying. But now, finally, India has found success only now. To know more on this, NDTV's managing editor Shiv Arora has exclusively spoken with Ashwini Vaishnav. Listen in to this special interview.
5: The occasion of Prime Minister Narendra Modi completing 12 years gives us the opportunity to dwell on an area that is going to dominate the next few years, but also be the driving force of India's growth for the foreseeable future. Obviously, I'm talking about AI, I'm talking about tech, I'm talking about semiconductors, those very exciting fields. And there is one man that is fronting this all-important charge here in India, and that is Minister Ashwini Vaishnav. Welcome, sir, and thank you for your time on something that everybody is talking about and everybody is interested in right now. I know you're extremely busy with all the different responsibilities that you have, but I want to ask you right at the start, at this time, about semicon, about semiconductors, because this is, in my personal view, one of the most exciting things that you have. You're doing a lot of exciting things, but this one has far-reaching consequences for India's growth story. Where are we? What is Semicon 2.0? And what are we going to achieve, sir?
6: Absolutely, you are right. Semiconductor industry is so important for our country. And especially in the current geopolitical scenario, India has emerged as a trusted partner. In that framework, India coming out as a country which designs semiconductor chips, manufactures them, and comes out as a trusted partner is very, very important. That's why Prime Minister put his focus on having this new industry. This is something that our country was trying since 1962. Yeah. Prime Minister Nehru tried, Prime Minister Indira Gandhi tried, Prime Minister Rajiv Gandhi tried, Prime Minister Dr. Manmohan Singh tried. Finally, we got success during Prime Minister Modi ji's tenure. And this success is very significant because it's an extremely complex industry. If you ask me, how do we explain the complexity of this industry to a common citizen, I give this example. Look at your nail. Mm. On your nail, if you have to write NDTV, okay, with a little bit of practice, you can write it. If you say that, okay, write 10 times

0: इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, एक चुने हुए प्रधानमंत्री सबसे लंबा कार्यकाल तक इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में काम करना, ये एक ऐतिहासिक पल है और ये मामूली नहीं है। 4,399 डेज प्रधानमंत्री जी का पूरा हो जाएगा और इस कार्यकाल में जो काम हुए हैं हमारे देश के लिए, मैं मानता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।
1: With that, it's a wrap on this edition of Breaking Ground. News and updates continue on NDTV. Stay tuned and thanks for watching.

0: Prime Minister Narendra Modi has become India's longest-serving elected Prime Minister in continuous office, completing 4,399 consecutive days, surpassing the record of the first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, and of Indira Gandhi. Marking the milestone, the Prime Minister underlined his government's focus on development, welfare and citizen-centric governance, saying public trust remains the driving force behind every reform and policy decision. The achievement comes as Narendra Modi completes 12 years in office and continues into his third consecutive term as Prime Minister. The Union Cabinet today passed a resolution congratulating the Prime Minister on the milestone, with members applauding his leadership and giving him a standing ovation. Meanwhile, several Union Ministers and BJP Chief Ministers visited temples across the country, offering prayers to mark the occasion.
1: आज के दिन भारत के प्रधान सेवक, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार जो भारत के प्रधान सेवक के रूप में सेवा की है, उसके सारे रिकॉर्ड आज के दिन उन्होंने तोड़ दिए हैं। और जिसे कहा जाए कि लगातार 2014 से 2026 तक जिस तरीके से उन्होंने निर्विघ्न भारत के प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है, इसमें उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी जो रिकॉर्ड था 4,398 दिनों का, उसको आज 4,399 दिन में वो रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है।
2: आज देश के लिए बहुत गौरवपूर्ण दिन है। अब तक देश की सबसे लंबा समय की प्रधानमंत्री की भूमिका में रहकर सेवा करने वाले सौभाग्यवान व्यक्ति माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ के अनन्य भक्त हैं। अब तक उन्होंने 4,359 दिन सर्वाधिक सेवा के अवसर देशवासियों को दिया। हम महाप्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं कि श्री मोदी जी को दीर्घायु दे और लंबे समय तक देश को सेवा करने का अवसर दे।
3: हमारा देश के लिए ये गौरव का पल है कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में 12 साल भी कंप्लीट हो गया है और लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, एक चुने हुए प्रधानमंत्री सबसे लंबा कार्यकाल तक इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में काम करना, ये एक ऐतिहासिक पल है और ये मामूली नहीं है। 4,399 डेज प्रधानमंत्री जी का पूरा हो जाएगा और इस कार्यकाल में जो काम हुए हैं हमारे देश के लिए, मैं मानता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि
4: 12 साल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में छलांग लगा रहा। आज हमें गर्व है कि आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। आज श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम 12वें 14वें नंबर से लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था से हम 4थे नंबर की विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। रक्षा क्षेत्र में भारत हथियार खरीदने वाला नहीं, अब हथियार बेचने वाला राष्ट्र बना है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से देश की नीतियों में परिवर्तन किया, अब भारत किसी हमले के बाद सफ़ेद झंडा नहीं दिखाता, कायर कौम की तरह खड़ा नहीं रहता, अब भारत जवाबी हमला करता है।
5: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनवरत रूप से प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए 12 साल का कालखंड पूरा हो रहा है और वो निर्वाचित देश की आज़ादी के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक कालखंड तक काम करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उनका ऐतिहासिक रिकॉर्ड आज दर्ज हो गया है। और ये 12 सालों का जो कालखंड है वो एक कर्मयोगी का, एक तपस्वी का और अनवरत रूप से साधना करते हुए एक साधक का कालखंड है।
6: देखिए 12 साल तो हो गए हैं, तो एक नया रिकॉर्ड तो मोदी जी ने प्रस्थापित किया है, वो अपनी जगह है, लेकिन आज देश की क्या हालत है उस पर भी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, विदेश नीति किस तरह से तहस नहस हो गई है, मोदी जी ने जो चुनाव के पहले वादे किए थे उसमें से कितने वादे पूरे हुए, क्या उसके बारे में मोदी जी ने कुछ अफसोस जाहिर किया है या कोई माफ़ी का इजहार किया है। 15 लाख रुपए काला धन, 2 करोड़ नौकरियां हर साल,

0: किसानों की आमदनी दुगुनी करना।
1: आज के दिवस पे प्रधानमंत्री जी भारतवर्ष के सबसे लंबे प्रजातंत्र प्रणाली से चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो चुके हैं, तो अभूतपूर्व स्थिरता और उसी के साथ भारत के घरेलू उत्पादन की दर 7.7% तक पहुंचकर पिछले 12 वर्षों में इसका एवरेज 7% के करीब आ चुका है, जिसके आधार पर अभूतपूर्व परिवर्तन भी हुआ है।
2: With that, time for us to slip into a short break. Coming up on the other side, West Asia on fire yet again. Details coming up after this break.

0: they are, the focus is on ease of living and also ease of doing business. Of course, as you rightly mentioned, this is amid a time of West Asia conflict, and we have seen how Prime Minister and the central leadership had spoken to the state chief ministers as well as to what their demands are, particularly regarding the petroleum and the oil and gas production, how their demands had increased in the recent past was because of the central leadership and Prime Minister Narendra Modi. The production has continuously increased and the burden had not been passed in these recent days. And that's the message that they wanted to also circulate to the common person. As I mentioned, Jan Seva is the theme of today's key crucial meeting of the NDA Chief Minister and Deputy Chief Ministers. What we've been also told is that the NDA leaders, the alliance partners of the Bharatiya Janata Party, would be also taking participation in this. But it is a rousing welcome that Prime Minister will get from all the leaders on completion of the number of days surpassing Jawaharlal Nehru's record of being the longest serving elected Prime Minister of the country.
1: All right, Aishwarya, thanks so much for joining us with those details. And there you can see all the chief ministers arriving there. Yogi Adityanath arriving at the Bharat Mandapam as all BJP chief ministers and NDA chief ministers and deputy chief ministers are arriving for this event to mark 12 years of the Modi government. Now, Prime Minister Modi has become India's longest serving elected prime minister in continuous in office, completing 4,399 consecutive days, surpassing the record of first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru as well as that of Indira Gandhi. Marking the milestone, the Prime Minister underlined his government's focus on development, welfare, citizen-centric governance, saying public trust remains the driving force behind every reform and policy decision. The achievement comes as Prime Minister Modi completes 12 years and continues into his third consecutive term. The Union Cabinet today passed a resolution congratulating him on the milestone, with members applauding his leadership and also giving a standing ovation. Meanwhile, several Union ministers and BJP chief ministers visited temples across the country this morning, offering prayers.
2: आज के दिन भारत के प्रधान सेवक, भारत के प्रधानमंत्री, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार जो भारत के प्रधान सेवक के रूप में सेवा की है, उसके सारे रिकॉर्ड आज के दिन उन्होंने तोड़ दिए हैं, और जिसे कहा जाए कि लगातार 2014 से 2026 तक जिस तरीके से उन्होंने निर्विघ्न भारत के प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है, इसमें उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी जो रिकॉर्ड था 4,398 दिनों का, उसको आज 4,399 दिन में वो रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है।
3: आज देश के लिए बहुत गौरवपूर्ण दिन है। अब तक देश की सबसे लंबा समय की प्रधानमंत्री की भूमिका में रहकर सेवा करने वाले सौभाग्यवान व्यक्ति माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ के अनन्य भक्त हैं। अब तक उन्होंने 4,359 दिन सर्वाधिक सेवा के अवसर देशवासियों को दिया। हम महाप्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं कि श्री मोदी जी को दीर्घायु दे और लंबे समय तक देश को सेवा करने का अवसर दे।
4: हमारा देश के लिए ये गौरव का पल है कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में 12 साल भी कंप्लीट हो गया है और लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, एक चुने हुए प्रधानमंत्री सबसे लंबा कार्यकाल तक इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में काम करना, ये एक ऐतिहासिक पल है और ये मामूली नहीं है। 4,399 डेज प्रधानमंत्री जी का पूरा हो जाएगा, और इस कार्यकाल में जो काम हुए हैं हमारे देश के लिए, मैं मानता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा

0: देश की नीतियों में परिवर्तन किया। अब भारत किसी हमले के बाद सफ़ेद झंडा नहीं दिखाता, कायर कौम की तरह खड़ा नहीं रहता, अब भारत जवाबी हमला करता है।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनवरत रूप से प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए 12 साल का कालखंड पूरा हो रहा है और वो निर्वाचित देश की आज़ादी के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक कालखंड तक काम करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उनका ऐतिहासिक रिकॉर्ड आज दर्ज हो गया है। और ये 12 सालों का जो कालखंड है वो एक कर्मयोगी का, एक तपस्वी का और अनवरत रूप से साधना करते हुए एक साधक का कालखंड है।
2: आज के दिवस पे प्रधानमंत्री जी भारतवर्ष के सबसे लंबे प्रजातंत्र प्रणाली से चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो चुके हैं, तो अभूतपूर्व स्थिरता और उसी के साथ भारत के घरेलू उत्पादन की दर 7.7% तक पहुंचकर पिछले 12 वर्षों में इसका एवरेज 7% के करीब आ चुका है, जिसके आधार पर अभूतपूर्व परिवर्तन भी हुआ है।
3: And with that, time for us to slip into a short break. More news coming up on the other side. Find out why Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar is in Delhi.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इंडिया इज रीवायरिंग द वे इट बिल्ड्स द वे इट कनेक्ट्स।
3: विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है।
2: फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिजिटल एक्सेस, फ्रॉम रिफॉर्म टू रियल इंपैक्ट। बट द बिग क्वेश्चन इज व्हाट विल डिफाइन द नेक्स्ट इंडिया। एनडीटीवी इग्नाइट द फ्यूचर इंडिया समिट, a closer look at governance, growth and the future of a new India on the NDTV network.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
8: स्मिता देव वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ TMC's एक्सपेंशन प्लान। Held together their campaign in Assam, also in Tripura, and for this to happen, also look at the timing, Shreyasi. The fact that you have this crucial meeting happening yesterday between Mamata Banerjee and Sonia Gandhi. There are MPs within the Congress who are saying, look, maybe now it's time for the Trinamool and Congress to merge. And right at that time, first you have a meeting of the India Alliance. At that time, Sukendu Shekhar Roy resigns. Then you have a meeting of Mamata Banerjee and Sonia Gandhi.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इंडिया इज रीवायरिंग द वे इट बिल्ड्स द वे इट कनेक्ट्स।
3: विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है।
2: फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिजिटल एक्सेस, फ्रॉम रिफॉर्म टू रियल इंपैक्ट। But the big question is, what will define the next India? NDTV Ignite, the Future India Summit. A closer look at governance, growth and the future of a new India on the NDTV network.
4: This is a show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
5: Really?
4: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram and trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
5: झाप करते हुए इस राजनीतिक यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखते हुए एक दिन ये पड़ाव भी आएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने का अवसर, इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूं। आपने इस अवसर पर मुझे सम्मानित किया, इतना मान दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, इतने लंबे समय तक मां भारती की सेवा का सौभाग्य मिलना ये ईश्वर की विशेष कृपा से ही संभव हो सकता है, और मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही ईश्वर का रूप है। और इसलिए मैंने सेवा कार्य को हमेशा एक साधना के रूप में ही देखा है, और ये साधना भी एकाकी नहीं रही है, ये एक सामूहिक यज्ञ है जिसमें आप सब ने और अनेकों साथियों ने कर्तव्य भाव से अपना योगदान दिया है। मैं आज इस यात्रा के ऐसे सभी साथियों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं। साथियों, इस अवसर पर एनडीए परिवार के सदस्यों ने एक रिजोल्यूशन भी पेश किया है। ये आप सबकी आत्मीयता और उदारता है, क्योंकि मैं इस यात्रा को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं मानता हूं। ये हर दृष्टिकोण से हम सबकी सामूहिक उपलब्धि है। ये एनडीए के हर घटक दल की एक समान उपलब्धि है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव को आप सभी को, भाजपा समेत हमारे एनडीए परिवार के सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं। साथियों, भारत की जनता का निरक्षीर विवेक हमेशा अद्भुत रहा है। देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता का महत्व समझा है। ये जनता जनार्दन की परिपक्वता ही है कि उसने लंबे समय तक मुझे इस तरह जनता की सेवा का अवसर दिया। 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए थे, इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, साल 2014 में जब एनडीए की जीत हुई थी, तब मैंने कहा था कि आज देश के सामान्य मानवी में एक नई आशा का उदय हुआ है। इस आशा का, इस उम्मीद का संरक्षण हम सभी का बहुत बड़ा दायित्व था। देश के लोगों ने कांग्रेस के विश्वासघात के बाद अपना भरोसा हमें सौंपा था। मुझे आज संतोष है, गर्व है कि एनडीए परिवार के तौर पर हमने देश के विश्वास को हमेशा और मजबूत किया है। ...2014 में आशा का उदय होता सूरज आज नए आत्मविश्वास के प्रकाश पुंज में बदल गया है। भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे। और मैं मानता हूं, कल जो गरीब था, आज जो नियो मिडिल क्लास बना है, उसे अब हमें पीछे नहीं होने देना है। इसलिए सरकार के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते, हमें दिन रात काम करना है, परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है। और इस संकल्प के साथ कि 140 करोड़ का ये देश हमसे जो उम्मीदें लगाए बैठा है वो जरूर पूरी हो। भारत का युवा, भारत की नारी शक्ति, भारत का मध्यम वर्ग, भारत के किसान, सबकी आकांक्षाएं, उनकी एस्पिरेशंस हमें पूरी करनी है। आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। साथियों, एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता यह भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है। और बड़ी ही चतुराई से इस धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट, यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया, जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में ना गवर्नेंस थी, ना नीति, ना नियत और ना ही निर्णय। साथियों, पहली बार अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई, तब जाकर हमें एक झलक दिखी कि विकास में गति कैसे आती है। लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में देश फिर से अस्थिरता के बवंडर में और कांग्रेस के सिकंजे में फंस गया। विकास तो दूर की बात है, देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में घसीट दिया। साथियों, देश का भाग्य फिर तब बदला जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी। देश ने देखा कि जब नियत, नीति और निर्णय तीनों एक साथ काम करते हैं तो विकास की गति कैसी होती है। देश ने देखा कि जो काम दशकों में होते थे वो काम महीनों में होने लगे। 2014 में 74 एयरपोर्ट से 2026 में 160 से अधिक एयरपोर्ट तक, 2014 में 1000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे से 2026 में 6700 किलोमीटर एक्सप्रेसवे तक, 2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो से 2026 में 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो तक, 2014 में 700 करोड़ रुपए डिफेंस एक्सपोर्ट से 2026 में 23,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट तक। देश ने बहुत लंबी यात्रा तय की है। साथियों, 2014 में देश में केवल 25 करोड़ इंटरनेट यूजर थे, आज 100 करोड़ से अधिक यूजर इंटरनेट से जुड़े हैं। 2014 में डिजिटल पेमेंट्स ना के बराबर थे, आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर वन देश है। 2014 में भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर मोबाइल बाहर से मंगाता था, आज भारत 33 करोड़ से अधिक मोबाइल हैंडसेट खुद बनाता है। 2014 में सोलर क्षमता केवल 2.5 गीगावाट थी, आज यह 150 गीगावाट से अधिक है। 2014 में एथेनॉल ब्लेंडिंग केवल 1.5% था, आज यह 20% तक पहुंच चुकी है। 2014 में देश की एक भी सेमीकंडक्टर यूनिट नहीं थी, आज देश में बन रही 10 से ज्यादा सेमीकंडक्टर यूनिट्स भारत को आधुनिकता की तरफ ले जा रही है। साथियों, हमने देश की जरूरतों को अपनी नीतियों और निर्णयों का आधार बनाया, नई सोच से नए फैसले लिए। हमने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई, सहकारी क्षेत्र को मजबूती देने के लिए अलग कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई, हमारे मछुआरे भाई बहनों के लिए अलग फिशरीज मिनिस्ट्री बनाई। हमारा फोकस क्लियर था, विकास की इस दौड़ में कोई पीछे न छूटे। साथियों, हमने दिव्यांगजनों के लिए कानून बनाया, आदिवासियों के लिए जनमन जैसी योजनाएं शुरू की, पशुपालकों और मछुआरों को पहले किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिलता था, हमने उन्हें भी सुविधा से जोड़ा। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी। साथियों, सवाल यह है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ? ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। एक व्यवस्था काम अटकाती भटकाती थी, आज की व्यवस्था कहती है काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा। और इसलिए साथियों, 2014 से 2026 की कहानी केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, यह उस भारत की कहानी है जिसने पहली बार अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ना शुरू किया है। वो भारत जो बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। साथियों, एनडीए के 12 वर्षों की

उद्योग की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। एक स्थिर सरकार होने का लाभ क्या होता है, ये बार बार इस दौर ने साबित किया है। कोरोना के समय को हम कभी नहीं भूल सकते, जब हर तरफ हाहाकार मचा था, लेकिन भारत उस हालात को मुकाबला करते हुए भी सफलता से आगे बढ़ा। साथियों, दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025 से 20 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है। ये सफलता इतनी आसान नहीं है दोस्तों। हम फ्रेजाइल 5 के कटघरे से बाहर निकलकर आज दुनिया की तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। साथियों, कल के विस्तृत भारत की गारंटी है आज का आकांक्षी भारत। आकांक्षी भारत के गर्भ में विकसित भारत पल रहा है। आज के भारत की आकांक्षाएं बड़ी हैं, सपने बड़े हैं, इसलिए उसके संकल्प और लक्ष्य भी उतने ही बड़े हैं। देश की इन आकांक्षाओं का वाहक हमारा मिडिल क्लास है, नियो मिडिल क्लास है। इसलिए हमारी सरकार मध्यम वर्ग के एस्पिरेशंस को पूरा करने में लगी है। मिडिल क्लास की ईज ऑफ लिविंग, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके लिए नए अवसर और नई संभावनाएं, हमने हर फ्रंट पर काम किया है। साथियों, 2014 से पहले मिडिल क्लास कानून की उलझनों का सबसे बड़ा शिकार हुआ करता था। जटिल टैक्स सिस्टम, आमदनी के सीमित स्रोत और टैक्स का बड़ा बोझ, खराब गवर्नेंस की मार, ये सब सामान्य मानव के लिए डेली लाइफ की चुनौती होती थी। लेकिन हमने मिडिल क्लास की परेशानियों को समझा, हमने मिडिल क्लास की आकांक्षाओं को समझा, और इसलिए आज 12 लाख रुपए तक की आमदनी पूरी तरह से टैक्स फ्री है। आज देश में सरल और फेसलेस टैक्स सिस्टम है। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से उनका जीवन आसान हुआ है। साथियों, बीते 12 वर्षों में मिडिल क्लास परिवार के बच्चों के लिए हर क्षेत्र में नए अवसर बने हैं। मध्यम वर्ग के घर का सपना पूरा हो सके, सरकार इसमें भी मदद कर रही है। घर में इलाज के खर्च का बोझ कम हो, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना में बिना आय सीमा के बुजुर्गों को भी शामिल किया गया है। जीएसटी रिफॉर्म का भी बहुत बड़ा लाभ देश के मध्यम वर्ग को हुआ है। उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता हुआ है, उसके सपनों से जुड़ी चीजें सस्ती हुई है। इन प्रयासों का परिणाम है कि आज देश का मिडिल क्लास अनिश्चितताओं से मुक्त हो रहा है। वो भरपूर आत्मविश्वास के साथ देश की विकास यात्रा को गति दे रहा है। साथियों, हमारे लिए दल से हमेशा अगर बड़ा कुछ है तो हमारा देश है। दल से बड़ा देश है। और जब नेशन फर्स्ट, देश प्रथम की भावना से काम होता है तो कोई भी निर्णय कठिन नहीं होता। इसलिए ऐसे फैसले

जिन्हें पहले असंभव समझा जाता था, जो देश के सुरक्षित भविष्य के लिए अनिवार्य थे, हमने बहुत ही सधे हुए तरीके से उन फैसलों को भी लिया। पहले सरकारें आर्टिकल 370 की बात करने से डरती थी, हमने उसे खत्म करके पूरे देश में एक संविधान लागू किया। पहले नॉर्थ ईस्ट से बम बंदूक और ब्लॉकेट जाने का नाम नहीं लेते थे, हमने नॉर्थ ईस्ट में शांति भी लौटाई और स्थिरता भी लेकर आई। पहले भारत आतंक के हमलों के बाद चुपचाप दर्द सहता रहता था, हमने आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा। साथियों, पहले मान लिया गया था कि नक्सलवाद, माओवाद अब कभी नहीं खत्म होने वाले हैं, कभी खत्म हो ही नहीं सकते। हमने देश को नक्सलवाद, माओवाद के उस जहर से मुक्त करके दिखाया है। साथियों, महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही। और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा, तेज गति से आगे बढ़ेगा। साथियों, बीते 12 वर्षों में देश ने जो कुछ हासिल किया वो दुनिया देख रही है, लेकिन अब हमें अपनी दृष्टि आगे की ओर रखनी है। हमें 2047 के लक्ष्य को देखते हुए उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी स्पीड को और बढ़ानी होगी। हमारा बेंचमार्क अब यह होना चाहिए कि बीते 12 वर्षों में जो स्पीड और स्केल हमारी रही है, उसको हम और अधिक बड़ा और व्यापक कैसे बना सके। आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है। दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती है, दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है, और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतर कर दिखाना। हमें यह समय गंवाना नहीं है, और मैं बार बार कहता हूं, यही समय है, सही समय है। साथ में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में खुद को श्रेष्ठ रखना है। हमें सिर्फ दुनिया जैसा नहीं करना, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना है। अब जैसे एनर्जी सिक्योरिटी है, बीते 12 वर्षों में हमने ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के लिए अभूतपूर्व काम किया। मैंने लाल किले से समुद्र मंथन अभियान की घोषणा की थी, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है। बीते दिनों में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन को लेकर काफी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, यानी आने वाला समय अनेक संभावनाओं से भरा हुआ है, और हमें हर संभावना का पूरा फायदा उठाना है। साथियों, अब हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करना है।
सोलर एनर्जी को लेकर तो काम तेजी से चल रहा है, लेकिन अब हमें न्यूक्लियर एनर्जी के लक्ष्यों को भी तेजी से हासिल करना है। अभी हमने दुनिया को दिखाया है कि भारत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी में कितना आगे पहुंच गया है। ये टेक्नोलॉजी हमें न्यूक्लियर एनर्जी में आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएगी। इसी तरह ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के मामले में भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी भारत को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मैप में सबसे प्रमुख बना पाएगी और ये नाम बनना पक्का है साथियों। आज बड़े एक्सपर्ट्स का भी अनुभव है कि जिन देशों ने मैन्युफैक्चरिंग के पूरे इकोसिस्टम पर 80-90 के दशक में काम किया, उन्हें उसका फायदा इस सदी में मिलना शुरू हुआ। भारत ने 10-12 वर्ष पहले जिस इकोसिस्टम पर काम करना शुरू किया, उसका लाभ अब देश को मिलना शुरू हो गया। 2014-15-16 के कालखंड में जो बात नींव डाली गई, उसके फल अब दिखाई देने लगे हैं। भारत तेजी से दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। साथियों, एनर्जी, मिनरल्स, चीप बैटरी स्टोरेज, स्पेस, ड्रोन, डेटा सेंटर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे हर सेक्टर, हर टेक्नोलॉजी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये एक दूसरे की पूरक है। भारत इनके लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रह सकता, क्योंकि ये भारत की आर्थिक और स्ट्रेटेजिक हर प्रकार की सिक्योरिटी से जुड़े विषय है। और तभी भारत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर इतना फोकस कर रहा है, तभी क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर मिशन बोर्ड पर काम चल रहा है। साथियों, शिपिंग सेक्टर में भारत आत्मनिर्भरता के नए लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम मेड इन इंडिया शिप पर ट्रेड करेंगे और कंटेनर भी मेड इन इंडिया होंगे। शिप मेंटेनेंस और रिपेयर से लेकर स्क्रैपिंग तक की सर्विसेज भी भारत देगा। यही विजन हमारे एविएशन सेक्टर के लिए है। आज हम मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट भी बनाएगा। देशवासी मेड इन इंडिया विमान में ही यात्रा करेंगे, वो दिन मैं देख रहा हूं दोस्त। साथियों, ये सदी टेक्नोलॉजी की है, डेटा की है। आज विश्व के सबसे बड़े और आधुनिक डेटा सेंटर्स भारत में बन रहे हैं। यही भारत की ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन का मजबूत पिलर बनाएगी। हमने यूपीआई के माध्यम से दुनिया को दिखाया है कि भारत कम से कम समय में टेक्नोलॉजी का इतना विस्तार कर सकता है। हमने दिखाया है कि हमारे युवाओं का सामर्थ्य क्या है। अब एआई, डीप टेक और एडवांस टेक्नोलॉजी में हमारे युवा नया दमखम दिखाने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आने वाले समय में दो औरतों में भारत का सामर्थ्य पूरी दुनिया देखेगी। ये सेक्टर है टूरिज्म और स्पोर्ट्स। ये दोनों भारत की इकोनॉमी के मजबूत पिलर बनेंगे। विशेष रूप से कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन और कॉन्सर्ट के मामले में भारत एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनने के लिए अब पूरी तरह सज रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से सेक्टर को बहुत पुश मिलेगा और स्पोर्ट्स में तो भारत के युवा कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं।

और हर दिन उनकी परफॉर्मेंस निखरती जा रही है। भारत दुनिया की बिगेस्ट स्पोर्ट्स लीग की धरती बनता जा रहा है। आने वाले सालों में हमारी ये ख्याति और बुलंद होगी। ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां भी भारत की एस्पिरेशन का ही प्रतिबिंब है। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है। साथियों, आज भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए रिफॉर्म कोई कंपल्शन नहीं है, रिफॉर्म हमारा कन्विक्शन है। और देश भी निरंतर रिफॉर्म्स को सपोर्ट कर रहा है। साथियों, देशवासियों की सहभागिता की हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। ये 12 वर्ष सरकार और समाज की सहभागिता का उत्सव मनाने वाले रहे हैं। बीते 12 वर्षों में मैंने जो भी सहयोग देश से मांगा, देशवासियों ने दिल खोल करके साथ दिया है। मैंने स्वच्छता का आग्रह किया तो पूरा देश निकल पड़ा। मैंने देश से डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए आह्वान किया तो भारत रियल टाइम ट्रांजैक्शन में दुनिया में सबसे आगे निकल गया। मैंने कोरोना महामारी के दौरान एकजुटता का संयम का आग्रह किया तो देश ने एकजुट होकर उस महामारी का सामना किया। जनता ने कभी हमें निराश नहीं किया। साथियों, आने वाले समय में भी इसी जन विश्वास और जन भागीदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा मंत्र रहा है। सबका प्रयास ही विकसित भारत के निर्माण की असली ऊर्जा है। हमें हर राज्य, हर शहर, हर गांव को जोड़ना है। अब समय आ गया है कि राज्यों के बीच नई प्रकार की तंदुरुस्त स्पर्धा, स्वस्थ स्पर्धा हो। स्पर्धा इसकी हो कि कौन सा राज्य सबसे तेजी से ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनता है। स्पर्धा इस बात की हो कि कौन सा शहर इनोवेशन का सबसे बड़ा केंद्र बनता है। स्पर्धा इस बात की हो कि कौन सा क्षेत्र रोजगार सृजन में सबसे आगे निकलता है। भारत की प्रगति राज्यों की ऐसी प्रगति से ही होने वाली है। आइए अगले दशक को उपलब्धियों के साथ साथ श्रेष्ठता का भी दशक बनाएं। आइए राजनीति की स्पर्धा से ऊपर उठकर विकास की स्पर्धा को राष्ट्रीय संस्कार बनाएं। 12 वर्षों की यात्रा उपलब्धियों की रही है। आने वाले वर्ष और भी नई सिद्धियों के होंगे, और भी बड़ी सिद्धियों के होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का मैं फिर से अंतःकरण पूर्वक आपके साथ सहयोग समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं सर झुका करके देश के कोटि कोटि नागरिकों को नमन करता हूं। उनके आशीर्वाद ने हमें एक ऊर्जा दी है, शक्ति दी है, प्रेरणा दी है, प्रोत्साहन दिया है। ये जनता जनार्दन के चरणों में सर झुका करके प्रणाम करते हुए आइए एक नए विश्वास के साथ हर संकल्प को पूरा करने के सामर्थ्य को जुटाते हुए हम चल पड़े। देशवासियों के सपनों को हमारे संकल्प बनाए। हमारा पल पल देशवासियों के संकल्पों की साकार करने की यात्रा का अहम पड़ाव बनता चले। इसी इस भावना के साथ देशवासियों के ऊपर पूरा भरोसा करते हुए आओ निकल पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा,
5: सबका राजा आर्थोर मसाला।
6: India is rewiring. The way it builds, the way it connects.
7: विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है।
6: From infrastructure to digital access, from reform to real impact. But the big question is, what will define the next India? NDTV Ignite, the Future India Summit. A closer look at governance, growth and the future of a new India on the NDTV network.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: दिस इज वेयर द फ्यूचर शोज अप फर्स्ट कॉन्वर्सेशंस विद द बिगेस्ट नेम्स इन टेक एंड एआई. Putting tech through its paces. No fancy jargon or spec sheets, just what matters. If it's shaping the future, you'll see it here first. The Tesla Model Y. This is Tech 360. Real talk, real reviews across the NDTV network.
2: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht. सेहतमंद हर रोज.
3: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट.
4: दीज काइंड ऑफ अवार्ड्स एंड यू नो ज्यूरी लाइनअप, यू आर ट्रूली गिविंग इट द राइट वेटेज.
5: आई थिंक इट्स हार्टनिंग टू सी टैलेंट दैट देयर इज इन अक्रॉस इंडिया इंक.
6: वी शुड बी अवार्डिंग कंपनीज एंड
7: air travel set to get costlier as aviation turbine fuel prices hiked again. Prices up by 10%, pushing jet fuel costs to around 115 rupees per litre. US-Iran war deepens further. Iran strikes American bases in Gulf after attacks over Apache chopper downing. Bahrain activates air raid sirens as Kuwait intercepts incoming aerial threats.

0: जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा आर्थोर मसाला।
4: इंडिया इज रीवायरिंग द वे इट बिल्ड्स, द वे इट कनेक्ट्स।
5: विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है।
4: From infrastructure to digital access, from reform to real impact. But the big question is, what will define the next India? NDTV Ignite, the Future India Summit. A closer look at governance, growth and the future of a new India on the NDTV network.
6: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी।

0: वाह
1: मामा क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा प्योर मसाला।
3: इंडिया इज रीवायरिंग द वे इट बिल्ड्स द वे इट कनेक्ट्स।
4: विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है।
3: From infrastructure to digital access, from reform to real impact. But the big question is, what will define the next India? NDTV Ignite, the Future India Summit. A closer look at governance, growth and the future of a new India on the NDTV network.
5: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।

0: what will define the next India. NDTV Ignite, the Future India Summit. A closer look at governance, growth and the future of a new India on the NDTV network.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।